में चलिले गेट्टी दसे कूचलिले कल तट्टीगिरा ओसयिले ए सुत्ति वरा सोंडु वरा पुयल पोल एंगो अडपांजु वरा परंदु वरा नम्म दोरा सिंगा।